0: नरसिंह व्रत
1: मिलान सेंकोक रियात apa karena sengkok ring iding kabur sapa nika cepon nah pajo be oreng catap.